0: बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
1: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
0: लासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
0: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH सॉलिसिटर्स, इमिग्रेशन लॉयर्स एट

0: साथी गम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
3: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही
1: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब.
6: Commercial time.
7: Hello Nottingham, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है. हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें. हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक. हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे. हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे. शुक्रिया.
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
9: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
10: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
9: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
10: मुगल बिल्डर्स?
9: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
10: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
9: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
10: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
9: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और

0: freshness you can trust, prices you'll love.
1: Are you looking for help in English, maths and science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
3: You are listening 97.1 FM.

0: We're just friends. So don't go look at me with that
1: look in your eye. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy.

0: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं?
1: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
0: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
0: डिलिशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
0: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
1: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी वाइब भी।
2: You are listening 97.1 FM.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Moriah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Moriah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Moriah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Moriah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: मेरे नंबर ते लिख सरपंची।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

मुझसा ना मिलेगा फिर कभी, ऐसी भी क्या खुशी जो तुमको मिल ही ना सकी।

0: हिट म्यूजिक एंटरटेनमेंट
1: पॉइंट। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: अटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लेटिंग एजेंट्स, आर यू इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ HMO लाइसेंस फॉर योर प्रॉपर्टी? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीजी मॉर्निंग टू ऑल माय लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी राइट नाउ। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM में। जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM ही वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के डोज। जी तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप। अब से ले गए ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा मेमोरेबल। जी तो लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबसे पहले 0115710971 है आपका और मेरा राब्ते का नंबर, तो जल्दी से इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आप मेरी तरह कम्युनिकेशन कर सकें और इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें और आप वो सब मुझसे शेयर करें जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है, सो उसके लिए आपको 0115710971 इस नंबर को जल्दी से सेव करना होगा, तभी हो सकेगी मेरी और आपकी कम्युनिकेशन। सो जी लिसनर्स, अगर आप हमें ट्यून करना चाहते हैं सो उसका भी सिंपल सा तरीका है radiofaza.com.uk, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं और अपने मूड को और भी ज्यादा मजीद खुशगवार बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन की जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो इस एप्लीकेशन के जरिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, साथ ही साथ आपको डेली अपडेट्स मिल सकती हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे किस दिन, किस टाइम और किस शो में आ रहा है ताकि आप उनको अच्छे से सुन सके। सो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से कनेक्टेड रहें, सो आप जल्दी से रेडियो फजा 97.1 FM इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, अगर आप तो एप्पल यूजर हैं सो आपने जाना है एप्पल स्टोर, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं सो सिंपली आपने जाना है गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब बात करते हैं उन तमाम तर लिसनर्स की जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर अपने ही सफर की तरफ रवा दवा हैं या फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं या इस वक्त अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने घर से बाहर निकलना है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आपका ये सफर, ये जर्नी बने खूबसूरत, यादगार, सो इसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। जी तो लिसनर, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और एक नए दिन के आगाज के साथ साथ, एक नए एपिसोड के साथ हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। लिसनर, कैन यू बिलीव इट कि अभी कल ही की बात है कि हमने इस वीक का स्टार्ट लिया था यानी कि मंडे से, और आज थर्सडे आ चुकी है यानी कि ये वीक भी तकरीबन अपनी एंडिंग के करीब पहुंच चुका है। और जैसे कि ये वीक अपनी एंडिंग के करीब पहुंच चुका है, साथ ही साथ हमारा जून भी अपनी एंडिंग के करीब पहुंच चुका है। वैसे जून इस लिहाज से बहुत ज्यादा फेमस है कि हीट वेव्स होती हैं और गर्मी का एक बाकायदा जो स्टार्ट होता है वो भी जून से ही होता है। सो आई थिंक सो बहुत सारे लिसनर्स तो इस वक्त मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ा सा शिकायत का शिकार होंगे, क्योंकि बाज़ुकात समटाइम्स ऐसा होता है कि जब वेदर थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है तो आपकी बॉडी पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात मरतब होते हैं। समटाइम्स हीट की वजह से कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जो इस गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं वो
बच जाते हैं. सो ये तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन जिंदगी को भी इन्हीं अप्स एंड डाउन्स के साथ चलाना है. तो चलिए इस नए शो का बाकायदा आगाज करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम और आप रहेंगे अब से लेकर ठीक दो घंटे तक साथ साथ. सो इसी तरह से गपशप तो चलती रहेगी और भी होंगी बहुत सारी मजे मजे की बातें, कुछ आपकी सुनी जाएंगी और कुछ आपको अपनी सुनाई जाएंगी. सो जी लिसनर, जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि एक अच्छे दिन का आगाज होता है एक अच्छे मील के साथ. सो कोशिश क्या करें कि आप अपने दिन के आगाज में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करें. अगर आपके पास टाइम नहीं है, या कुछ लोगों की ये भी एक हैबिट होती है कि वो लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ मस्ता चल रहा है, सो कोशिश किया करें कि आप कुछ हैवी ना खाएं, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा सिंपल सा लाइट सा खा लिया करें, क्योंकि आपने एक पूरा दिन गुजारना होता है और पूरे दिन में बहुत से काम करने होते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है और जिंदगी की गाड़ी का पहिया चूंकि आगे चल रहा होता है, तो इंसान समटाइम्स बहुत ज्यादा थक जाता है. सो इंसान को किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की. और एनर्जी कहाँ से आती है? एक अच्छे हेल्दी मील से. सो कोशिश किया करें ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, लेकिन ब्रेकफास्ट लास्ट में किया करें और ब्रेकफास्ट को स्किप मत किया करें. चलो लिसनर, ये तो थी बात हो गई हमारे पूरे दिन के लिए एनर्जी के डोज की, लेकिन दिन के स्टार्ट में जहां एनर्जी की जरूरत होती है वहीं जरूरत होती है हमारे माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने की और एक एनर्जेटिक वाइब देने की. सो इसीलिए आपके दिन को खूबसूरत और एनर्जेटिक बनाने के लिए शो में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, ताकि इस ट्रैक को सुनने के बाद आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए. चूंकि वैसे भी कहा जाता है कि म्यूजिक इंसान को हील करता है, प्लस म्यूजिक जो है वो हमारी सोल के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत से लोग म्यूजिक को एज अ थेरेपी भी यूज करते हैं. सो डियर लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए.

वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको हमारा ये साउंड ट्रैक? मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट सुनते हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये साउंड ट्रैक अच्छा लगा होगा। अगर आपकी भी है ऐसी कोई रिकमेंडेशन, या आप चाहते हैं कि हम आपका कोई फेवरेट साउंड ट्रैक शो में शामिल करें, सो उसके लिए सिंपली आपने 0115710091 जो कि है मेरा और आपका राबते का नंबर, इस नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो आपकी रिक्वेस्ट को जरूर फुलफिल किया जाएगा और आपके फेवरेट ट्रैक्स को भी शो में शामिल किया जाएगा। तो लिसनर्स, हम बात कर रहे थे कि मूड को फ्रेश करने की, तो आई थिंक सो इस साउंड ट्रैक के बाद आपका मूड भी काफी हद तक फ्रेश हो चुका होगा, और अगर अभी भी नहीं हुआ तो और भी खूबसूरत खूबसूरत साउंड ट्रैक्स शामिल करते रहेंगे

जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर शो का स्टार्टअप करते हैं एक खूबसूरत से साउंड ट्रैक से, ताकि आपका मूड थोड़ा सा इनहेंस हो जाए, और साथ ही साथ साउंड ट्रैक के हमारे हर शो का स्टार्टअप होता है एक खूबसूरत से एक मोटिवेशनल सी बात से, ताकि हम कोशिश करेंगे पूरा दिन आपका पॉजिटिव गुजरे इन पॉजिटिव बातों की वजह से। और अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, सो वो भी थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाए। सो इसी तरह से हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, अपने तमाम लिसनर्स के लिए, ऐसा ही खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोट ऑफ द डे, जो कि बना देगा आपके आज के इस दिन को, अगर इस दिन को ना सही तो इस सुबह को जरूर खूबसूरत। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से शेयर करती हूँ हमारा आज का जो कोट है। बेसिकली ये एक अकवाल जरी है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, आई एम श्योर आप सभी ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन बाय द टाइम जब मैंने ये सुना था, एट दैट टाइम मुझे इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, लेकिन टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ों का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने सभी लिसनर से इसको शेयर किया जाए, और साथ ही साथ उनसे भी इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए और देखा जाए कि उनका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है।

चलिए तो लिसनर्स, हमारी आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो कुछ यूं है, यानी कि आज का अकवाले जरी। सो बेसिकली हमारा आज का अकवाले जरी ये कहता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब इंसान वो नहीं होता कि जिसके पास दौलत नहीं होती, जिसके पास शोहरत नहीं होती, जिसके पास माल वगैरह नहीं होता, बट इस दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब इंसान वो होता है कि जिसके पास कोई भी मुखलिस दोस्त नहीं होता।

0: टेबल लिसनर्स, आप बहुत से लोग ऐसे होंगे हम में से ही जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है. अगर इंसान के पास दौलत हो, प्रॉपर्टीज हो, तो इंसान हैप्पी रह सकता है, उससे भला किसी की, किसी चीज़ की, किसी इंसान की क्या ज़रूरत. लेकिन सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम इस कोर्ट को डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे जिनको इसका मीनिंग नहीं मालूम. सो बेसिकली हमारा ये कोर्ट ये कहता है कि अगर तो आपके पास बहुत सारी दौलत है, आपके पास बहुत कुछ है इस दुनिया में, लेकिन अगर आपके पास मुखलिस दोस्त नहीं है, दोस्त मीन्स ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके साथ लॉयल हों, जो आपके बारे में अच्छा सोचें, आपके बारे में अच्छा जानें और आपकी बुराई ना करें, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि एक इस दुनिया में बेसिकली हम इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. वी ह्यूमंस, वी नीड अदर पीपल्स इन अवर लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल. अकेले तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता ना. सो इसीलिए हमारा ये कोट ये कहता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान वो है जिसके पास लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं. क्योंकि मैंने सुना है कि अगर इंसान के दोस्त अच्छे हों तो मुश्किल वक्त भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और हर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाला जा सकता है. तो दिल लिसनर्स, गुफ्तगू तो अभी हमारी जारी थी और इस टॉपिक पे मजीद हमने बात ही तो करनी थी, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक से उस पार यानी कि वापसी पर हम इसी चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपके लिए इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए. सो चलते हैं इस ब्रेक की जानिब.
1: इट्स कमर्शियल टाइम.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का.
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM. Turn it up, radio.

वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सबको वेलकम करती हूँ द डीवा डायलॉग सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM में. तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब सक्सेसफुल कौन से लोग होते हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनके साथ एक अच्छा मॉरल सपोर्ट होता है. यानी कि इनकेस अगर आपके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके पास अच्छे प्लान्स नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास अच्छी कंपनी है, अच्छे दोस्त हैं, प्लस ऐसे लोग हैं जो कि आपको अच्छे और बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं, सो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इंसान की ज़िंदगी में, लाइफ में रिश्ते बनते चले जाते हैं. क्योंकि जिंदगी बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर सी है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी आपके लिए टर्न हो जाता है. सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करें जो कि आपके साथ ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि इमोशनली भी इन्वॉल्व हों. क्योंकि समटाइम्स बाज़ूकात ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को अपने फ्रेंड्स समझते होते हैं, लेकिन वो लोग हमें अपना दोस्त उस तरह से नहीं मानते. यानी कि फ्रेंडशिप टू साइडेड नहीं, वन साइडेड होती है. हमें ऐसे लगता है कि वो लोग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो लोग हमें उस तरह से नहीं देख रहे होते. सो इस तरह की सिचुएशन में भी आपको समटाइम्स जेलसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है. सो कोशिश करें कि बहुत सोच समझ के अपना सर्कल चुने. सर्कल हमेशा स्मॉल होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए और सपोर्टिव होने चाहिए.

ठीक है लिसनर, जहाँ हम बात कर रहे हैं इतनी ज़्यादा दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अदद फ्रेंडशिप सॉन्ग शामिल किया जाए. सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक, और आप भी बताइएगा कि आपको ये साउंड ट्रैक कैसा लगा.

सीरियत लिसनर्स, कहा जाता है कि अच्छा दोस्त वो नहीं जो हर बात पर हाँ करे, बल्कि वो है जो सच बताए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे बहुत से दोस्त होते हैं जिन्हें हम अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं और वो हमेशा हमसे एग्री नहीं करते, बट समटाइम्स बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स हमसे डिसएग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सुधारना चाहते हैं। अगर आपका अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि जो आपको रोके, आपको टोके और आपको अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाए, वही होता है आपका अच्छा, सच्चा और मुखलिस दोस्त। जी तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ यूके में ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, दिन भर बहुत से काम काज करने होते हैं, वही एक बोरिंग रूटीन जिसमें डेली ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर बहुत से काम काज करना, इवन के समटाइम्स इंसान के पास खुद के लिए भी वक्त नहीं बचता। तो ऐसे समय में इंसान के पास तो ये टाइम ही नहीं होता कि वो अपने दोस्तों से मिले जुले, उनके साथ बैठे, एक कप चाय पिए और ज़िंदगी के उन हालात और वाकयात को डिस्कस करे कि जहाँ जिस मोड़ पर जिस लम्हे में वो लोग दोस्त बने थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस पास जिंदगी में और कैरियर की चलसुचल में तो हमारे बहुत से आपके मेरे हम सभी के ऐसे दोस्त हैं जो कि अपने ज़िंदगी को, अपने गोल्स को लेकर चलते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी से बहुत आगे, बहुत दूर, आउट ऑफ कंट्री मूव कर चुके हैं। सो अगर आज आप सभी का भी है कोई ऐसा दोस्त जिसे आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस और आप चाहते हैं कि आपका वो दोस्त भी आपको सुन सके, सो आप उन्हें कोई खूबसूरत सा प्यारा सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें 01157100971 जो कि है मेरा और आपका रابطے का नंबर, इस नंबर पर बता सकते हैं कि आपके क्या तासुरात हैं और आप अपने किस दोस्त को मिस कर रही हैं, और अगर आपके पास अपने उस दोस्त के लिए है कोई पैगाम तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपके दोस्त तक, अगर वो भी हमें सुन रहा है, ये पैगाम पहुंचा दूं। तो जी लिसनर्स, अच्छे दोस्त इंसान की दौलत होते हैं, अच्छे दोस्त इंसान का कुल असासा होते हैं। सो अच्छे दोस्तों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन समटाइम्स हमारे दोस्त हमें तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं। जैसे कि अब मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, मतलब ऐसा सच मेरा लिमिटेड सा सर्कल है, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती, लेकिन समटाइम्स मेरे वही जो क्लोज फ्रेंड्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मैं इरीटेट भी होती हूँ, लेकिन फिर साथ ही साथ ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी में ये मौका दोबारा नहीं मिलता, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और लिमिटेड है, आज अगर हम साथ हैं तो हमें चाहिए कि मिलजुल कर अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएं, क्योंकि हो सकता है कल को हम इस तरह से साथ ना हो या फिर ज़िंदगी में दोबारा इस तरह से गपशप का, बातचीत का, मिलने मिलाने का मौका ना मिले। सो अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपको हो चुके हैं हफ्तों मिले हुए, तो इट्स द टाइम कि आप आज ही वक्त निकालें, अपने उस दोस्त को कॉल करें, उसे बताएं कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है या उसके आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मैं तो यही कहूँगी कि आज ही अपने दोस्त के साथ मिलने का कोई ना कोई प्लान बना लें, क्योंकि अगर इंसान सोचना शुरू कर दे कि अच्छा कल करूँगा, परसों करूँगा, तो फिर वही बात आ जाती है कि बीच में बहुत से काम काज आ जाते हैं और इंसान उस तरह से नहीं प्लान को परस्यू कर पाता। सो अपने दोस्तों से मिले जुलें और उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को बताते हो कि उसकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है।

जी तो लिसनर्स, अभी इस वक्त हमारे एक लिसनर की रिक्वेस्ट आई है कि वो चाहते हैं कि उनका फेवरेट पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए. सो हम ज़रूर अपने इस लिसनर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे और उनका फेवरेट साउंड ट्रैक लाजमी शो में शामिल करेंगे. तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आपके फेवरेट साउंड ट्रैक्स शो में शामिल हों तो ज़रूर हमें बताइएगा. चले जी, हम उनका फेवरेट साउंड ट्रैक प्ले करते हैं और आप और मैं मिलकर सुनते हैं.

जी तो लिसनर्स, कहा जाता है कि दोस्ती जिंदगी का वो खूबसूरत रिश्ता है जो दिलों को जोड़ देता है। एक सच्चा दोस्त हमारा हमारी खुशियों में हमेशा मुस्कुराता है और हमारे गमों में हमेशा हमें सहारा देता है। दोस्ती सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करने का, ट्रस्ट बिल्ड करने का नाम है। जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, इसीलिए अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि दोस्त दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता होता है जो कि बिना किसी ब्लड ग्रुप के आपके साथ खड़ा रहता है, आपको सपोर्ट करता है और आपकी हाँ में हाँ मिलाता है।

सो कोशिश करिए, जिंदगी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है. अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो आपके साथ हर मुश्किल वक्त पे खड़ा रहता है, तो कोशिश करिए कि हमेशा उसके साथ रहिए, उसका साथ और उसका हाथ कभी मत छोड़िए. तो जी लिसनर्स, जहां हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, तो वहीं बात करते हैं हम जरा थोड़ी सी जेंडर के बारे में भी. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गर्ल्स हो या बॉयज, हर एक इंसान का, हर एक बंदे का दोस्ती का तरीका कार थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर हम बात करें अब लड़कों की, अच्छा लड़कों की दोस्ती बहुत डिफरेंट होती है. लड़के क्या करते हैं कि लड़कों में उस तरह से जेलसी फैक्टर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता. दोस्त क्या करते हैं, अक्सर इधर उधर कहीं भी मिल लेते हैं, दोस्ती में फॉर्मेलिटीज नहीं होती. आप सभी ने नोट किया होगा कि अच्छा अगर लड़के दोस्त होते हैं तो आते जाते रास्ते में, स्ट्रीट में, कहीं पर भी मिल जाते हैं, तो वहीं गपशप का सिलसिला शुरू कर देते हैं. और फिर जब लड़के बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और बहुत सा वक्त गुजर जाता है. इसी तरह से आप सभी ने भी ये चीज़ नोट की है कि लड़के दोस्तों में ये भी चीज़ नहीं देखी जाती कि अच्छा फलां बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, फलां बहुत गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है. अच्छा आप सबने ये चीज़ देखी है कि जब भी कभी ऐसा हो कि बॉयज़ गेट टुगेदर हो और वो लोग कहीं पर भी जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं, या इवन के चाय पीने भी जाएं, तो उनमें ये चीज़ नहीं होती कि अच्छा हम क्या करेंगे, बिल डिवाइड करेंगे. लड़के क्या करते हैं कि सभी दोस्तों में से कोई भी एक दोस्त उठता है, उठ खड़ा होता है और सबका बिल दे देता है. लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी ऑपोजिट है. अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती. अच्छा लड़कियों की दोस्ती में ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि लड़कियों की दोस्ती में कंपैरिजन होता है, जेलसी फैक्टर होता है और लड़कियाँ हमेशा बिल स्प्लिट करती हैं, जो कि लड़के बिल्कुल भी नहीं करते. इसी तरह से अगर हम बात करें अब शॉपिंग की, तो अच्छा लड़के क्या करते हैं, सिंपली किसी भी शॉप पर जाएंगे, किसी मार्ट में जाएंगे, जो उनको चीज़ अच्छी लगेगी पसंद करेंगे, साथ ही खरीदेंगे और बस अपने दोस्त के साथ आगे निकल पड़ेंगे, क्योंकि लड़के चाहते हैं कि काम शॉर्ट हो, लिमिटेड हो और जल्दी हो. अब अगर हम बात करें हमारी डीवाज की, तो हमारी डीवाज क्या करती हैं, एक शॉप में जाएंगी, आपस में डिस्कशन करेंगी, एक दूसरे को दिखाएंगी कि अच्छा देखो ये ड्रेस अच्छा लग रहा है. इवन तो उनकी फ्रेंड कहेगी भी ना कि ये ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रिटी है, तुम ले लो. लेकिन हमारी गर्ल्स क्या करेंगी, नहीं अभी ज़रा हम किसी और शॉप में जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को, इधर उधर जाकर देखते हैं और फिर देन इस तरह से शॉपिंग करती हैं. तो इसी तरह से लड़कों की दोस्ती में और लड़कियों की दोस्ती में बहुत से इस तरह के माइनर डिफरेंसेस हैं. लेकिन अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ कहूँगी कि लड़कों की दोस्ती लड़कियों की दोस्ती से ज़्यादा अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि लड़कों में जेलसी फैक्टर नहीं होता, वो आपको थ्रू द टैप्स जाके सपोर्ट करते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं. अच्छा अगर ये किसी की भी लड़ाई हो जाएगी किसी से, तो उसके दोस्त क्या करेंगे कि उसके साथ खड़े रहेंगे, लड़ाई में आगे बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे. लेकिन हमारी गर्ल्स क्या करती हैं कि अच्छा अगर दो फ्रेंड्स होंगी और दोनों में से किसी एक का किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, तो लड़कियां क्या करती हैं, वो कहेंगी कि अच्छा ठीक है तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हो गया, सो व्हाट्स द बिग डील, शी इज़ माई फ्रेंड, तो मैं उसके साथ तो बात करूंगी. तो इसी तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे लड़कों की और हमारी लड़कियों की दोस्ती में. बहरहाल बात अगर जेंडर की हो या कुछ भी हो, लेकिन जो आपका सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा आपका सच्चा दोस्त रहता है. आपका सच्चा दोस्त वो होता है जिसके सामने आपको बिना किसी फिल्टर के इजिली आना लगे. वो आपका सच्चा दोस्त नहीं होता जिसके सामने आप फॉर्मल हो, फॉर्मेलिटीज करें या आप अपने रियल सेल्फ को उससे छुपाएं. जी तो लिसनर्स, ऐसी बात पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सब मुझे बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, कि आपको ऐसा लगता है कि बॉयज़ की फ्रेंडशिप गर्ल्स फ्रेंडशिप से ज़्यादा अच्छी होती है. अगर आपको भी मेरी तरह ऐसे लगता है तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि मेरे पास तो इस चीज़ का वैलिड रीज़न है. अगर आपके पास भी है तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने इनर थॉट्स मुझसे शेयर करते हैं और इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है. तो जी लिसनर्स, एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर.
یعنی کہ میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر, جس نمبر کے ذریعے سے ہماری ہو سکتی ہے کمیونیکیشن, کچھ آپ کی باتیں سنی جا سکتی ہیں اور کچھ آپ کو اپنی باتیں سنائی جا سکتی ہیں. تو جی لسنرز, اسی طرح سے بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, دوستی انکریز مت کریں, کوشش کریں کہ سرکل لمیٹڈ ہو, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا سرکل بہت بڑا ہو جاتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بیچ میں ضرور شامل ہو جاتے ہیں جو کہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں. سو ہم نے جیلس پیپلز کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا, ان سے ذرا دور ذرا سائڈ پر ہی رہنا ہے, لیکن ہمیں چاہیے ایسے لوگ جو ہمیں انڈرسٹینڈ کریں, ہمیں سمجھیں. سو دی لسنرز, اسی کے ساتھ ساتھ ابھی وقت ہوا ہے شو میں ایک عدد کمرشل بریک کا. آئی نو باتیں کرتے کرتے اتنا اچھا لگ رہا ہے, اور آپ سبھی کے میسیجز جو آپ مجھے لکھ کر بھیج رہے ہیں وہ سب بھی میں ساتھ ساتھ ریڈ کر رہی ہوں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا فیڈ بیک. تو ابھی چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار, تب تک کے لیے ریڈیو فضا 97.1 FM کو اسی طرح سے سنتے رہیے اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہیے.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप
3: मुखड़ल
1: फिल्मी गाने

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फिजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को खुशामदीद करती हूँ आपके पसंदीदा शो द टीवा डायलॉग में, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम में। तो लिसनर्स, वक्त आ चुका है हमारे शो के यानी कि डीवा डायलॉग के उस सेगमेंट का।

0: होती हैं, बहुत ईजी होती हैं और आप उनको बिल्कुल ईजीली बना सकते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये रेसिपीज इतनी ईजी हैं कि हमारी डीवास के साथ साथ हमारे जितने भी मेल लिसनर्स हैं वो भी अगर चाहें ट्राई करना तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वही रेसिपीज लेकर आऊँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हों, ऑथेंटिक हों, डिलिशियस हों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ यूके में लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होती है, सो डेली बेसिस पर हमारे पास उस तरह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम घंटों लगा कर कुछ बनाएं। और फिर ये भी एक टेंशन होती है कि खाना पकाना है, क्योंकि डेली बेसिस पर कुकिंग भी ऐसा एक टास्क होता है। और साथ ही साथ हम ये भी सोच रहे होते हैं, जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं जो घरों में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, चाहे आप मदर हैं या फिर आप यंग फीमेल हैं, आप सभी यही चीज़ सोच रहे होती हैं कि क्या बनाया जाए, क्या ऐसा खाने में ट्राई करें जो कि हमें सबको पसंद आए, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबको। सो आप सभी की उन तमाम तर समस्याओं का सोल्यूशंस है मेरे पास, क्योंकि आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज, जैसा कि कल हमने बनाया था मज़ेदार चिकन पार्मिजान, साथ ही साथ एग फ्राइड राइस और मीठे में ऑथेंटिक घी। सो मैंने सोचा कि अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंटल खाना तो हमने ट्राई कर लिया है, आज बारी आती है कुछ देसी, कुछ स्पेशल तड़के वाली रेसिपी की। सो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ द स्पाइस किचन में ऐसी रेसिपीज जो कि हैं ऑथेंटिक एशियन रेसिपीज, और हमारी एशियन कम्युनिटी को स्पेशली जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर दुनिया के किसी भी कोने से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ताकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, खुश हो जाएं, क्योंकि आज बनने जा रही हैं स्पाइस किचन में सिंपल एशियन ऑथेंटिक रेसिपीज। सो बिना भी वक्त ज़ाया किए आप सभी से रेसिपीज शेयर करती हूँ। लेकिन शो में हमारे आई है एक रिक्वेस्ट, जी हाँ, हमारे शो में इस वक्त एक गाने की रिक्वेस्ट आई है, यानी कि हमारे एक लिसनर्स का कहना है कि ये गाना शो में प्ले किया जाए और वो ये सॉन्ग अपने प्यारे से दोस्त को डेडिकेट करना चाहते हैं। सो हम ये गाना लास्ट में शो में शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी तमाम तर रिक्वेस्ट को फुलफिल करें, आपकी क्यूरीज को पूरा करें और आपके मूड को अच्छा कर दें। सो जी सुनते हैं ये खूबसूरत सा फ्रेंडशिप सॉन्ग जो कि हमारे एक लिसनर ने अपने एक दोस्त को डेडिकेट किया है। आई थिंक सो उन्हें मालूम हो जाएगा ये गाना सुनने के बाद कि हमने ये गाना उनके लिए प्ले कर दिया है। तो आइए आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।

बच्चों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

जी तो लिसनर्स, अभी हमने तो अपने लिसनर की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया, अब बारी आती है हमारी दीवाज की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का, यानी कि किचन की जानिब बढ़ने का। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी। तो जी आज हम बनाएंगे शो में ऑथेंटिक वाइट चिकन कड़ाही, क्योंकि हमने सोचा कि काफ़ी चाइनीज़ के बारे में बात कर ली, कॉन्टिनेंटल के बारे में भी बात कर ली, तो अब ज़रा वापस से अपने एशियन खानों की जानिब बढ़ा जाए, क्योंकि हम देसी फैमिलीज़ में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब तक खाना देसी ना हो, ऑथेंटिक एशियन ना हो, तब तक हमारे घर के बड़ों का, बुजुर्गों का तो खाना खाने को दिल ही नहीं करता। सो इसीलिए आज हम बनाएंगे द स्पाइस किचन में वाइट चिकन कड़ाही। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अपनी नोटबुक, अपनी डायरी, कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए, ताकि जब मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँ तो आप फौरन से उनको नोट डाउन कर लें, कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी इंग्रेडिएंट हो जाए मिस। सो जल्दी से नोटबुक लेकर आ जाइए। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा चिकन 1.5 kg, साथ ही साथ हमें चाहिए योगर्ट 1 cup, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट के रख लेना है। साथ ही साथ हमारा अगला इंग्रेडिएंट है फ्रेश क्रीम, जिसे हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 cup, यानी कि 1 full cup एंड 1.5 cup। सो अगला इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, प्याज का पेस्ट 1 दरमियाना प्याज लेके अच्छी तरह से उसे कट करके बॉईल करके हमने उसका एक पेस्ट बनाकर रख लेना है, जिसे हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी के अंदर। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ग्रीन चिलीज, यानी कि हरी मिर्चें 4 से 5 अदद लंबी बारीक कटी हुई। अब बात करते हैं स्पाइसेस की, यानी कि उस वाहिद इंग्रेडिएंट की जिसके बिना हर खाना, हर जायका अधूरा है, क्योंकि खानों में स्वाद तभी आता है जब हम शामिल करते हैं खानों में मज़ेदार स्पाइसेस और बैलेंस स्पाइसेस। सो इस रेसिपी में शामिल होने जा रही है सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 tablespoon, काली मिर्च पाउडर 1 tablespoon, जीरा पाउडर 1 tablespoon, धनिया पाउडर 1 tablespoon, और हमारा लास्ट स्पाइस है गरम मसाला पाउडर 1.5 tablespoon, यानी कि 1 full tablespoon एंड 1.5 tablespoon। और एज यूजुअल हमेशा की तरह आखिर में बारी आती है हमारे इंग्रेडिएंट सॉल्ट की, यानी नमक की, जो कि हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। मैं वैसे इस रेसिपी में 2 tablespoon नमक शामिल कर रही हूँ। इट्स टोटली योर चॉइस, आप अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ना बेसिकली नमक ज़्यादा पसंद है और मैं प्रेफर करती हूँ कि खाने में नमक थोड़ा सा तेज़ हो, तभी मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। सो इट्स टोटली योर चॉइस, अगर तो आपको ज़्यादा नमक पसंद है मेरी तरह तो आप इतना शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम नमक पसंद है तो आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। सो यह आप पर डिपेंड करता है। अब बारी आती है हमारे आखिरी फाइनल इंग्रेडिएंट की, यानी कि कुकिंग ऑयल, बासमती घी या फिर बटर। आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ के अंदर इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि तीनों ही सूरतों में हमारा खाना बहुत अच्छा बनेगा, डिलिशियस बनेगा और जायका, टेस्ट, अरोमा बरकरार रहेगा। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दी है। अभी वक्त हुआ है माहौल को थोड़ा सा चेंज करने का, यानी कि माहौल में थोड़ी सी तब्दीली रोनमा करने का। सो किस तरह से हम इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, ऑब्वियसली एक अच्छे म्यूजिकल ट्रैक से। तो जी लिसनर्स, आइए सुनते हैं ये अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक। ट्रैक से उस पार आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए।

अब आई आती है हमारे अगले स्टेप की, यानी कि अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को शामिल करने के साथ ही हम अपनी आंच को कर देंगे तेज, ताकि हम अच्छे से चिकन को भून लें और चिकन का रंग बिल्कुल बदल कर सफ़ेद हो जाए। सो अब इस प्रोसेस को 5 से 6 मिनट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आपका चिकन बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अब आई आती है स्पाइसेस की। अब आंच को बिल्कुल हल्का कर दें और आप इसमें शामिल करें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर और नमक। अच्छा, इन सभी स्पाइसेस को शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर ले। फिर बारी आती है दही शामिल करने की। सो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही, योगर्ट और इसे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि जो चिकन है वो अपने ही पानी के अंदर गल जाए। अच्छा, जब आपको लगे कि आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल उभर कर ऊपर आ चुका है, सो अब आपने इसमें शामिल कर देना है काली मिर्च, गरम मसाला, फ्रेश क्रीम, इन तीनों चीज़ों को शामिल करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ कटी हुई हरी मिर्चें और जो जिंजर गार्लिक हमने साइड में कट करके रखे थे, हम उनको भी बीच में शामिल कर देंगे।

अब आपने क्या करना है, करना बस इतना सा है कि 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पर रखना है और 2 से 3 मिनट के बाद आपकी मज़ेदार सी वाइट चिकन क्रीमी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। सो ये थी हमारी आज की मेन रेसिपी, यानी कि हमारी आज की मेन कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब। सो दिस रेसिपी डेडिकेट्स टू ऑल द लिसनर्स, स्पेशली ऑल द लिसनर्स हु आर चिकन लवर, क्योंकि चिकन लवर को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए। कोशिश यही की है कि हम कम स्पाइसेस में इस रेसिपी को रेडी करें ताकि इसका ऑथेंटिक टेस्ट अरोमा बरकरार रहे। सो जो लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की जानिब और अगली रेसिपी डेडिकेट करूँगी मैं उन सभी लिसनर्स को जो कि हैं हमारे वेज लवर, क्योंकि हमेशा कोशिश करती हूँ मैं कि अपने सभी लिसनर्स का ख्याल रखूँ, चाहे आप चिकन लवर हो या हो आप वेज लवर। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप दोनों का ही ख्याल रखूँ और आप दोनों के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग रेसिपीज बनाऊँ।

सोचे लिसनर्स, आज की द स्पाइस किचन में हम बनाने जा रहे हैं द नेक्स्ट रेसिपी इज मज़ेदार सी शाही दाल। आई नो जब से काफ़ी टाइम हो चुका है हम रेसिपीज बना रहे हैं तो अभी तक हमने दाल नहीं बनाई। आई नो दाल आपको, मुझे, हम सभी को बनानी आती होगी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी दाल को एक अलग से, डिफरेंट से, मुनफरिद स्टाइल में, एक ऐसे स्टाइल में जो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लस आपको इसमें देसी तड़का मिलेगा और साथ ही साथ थोड़ा सा वलेती टेस्ट भी। सो डियर लिसनर्स, इस रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ, लेकिन माई लवली डिवास, अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो डियर लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं द डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम में। जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 एफएम ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी इस एंटरटेनमेंट की डोज को मैं बिल्कुल भी कम ना होने दूं, साथ ही साथ गपशप का सिलसिला हो और साथ ही साथ हो म्यूजिक और मस्ती। जी तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मजेदार से खानों की, पकवान की रेसिपीज की, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली नेक्स्ट रेसिपी को, जो कि है मजेदार सी शाही ढाबा स्टाइल दाल। क्योंकि दाल तो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन आई एम श्योर जिस स्टाइल से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और आपने इस स्टाइल में अभी तक दाल नहीं ट्राई की होगी। तो अगर आपने नहीं ट्राई की सो आज ही ट्राई करिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ नया हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि एक सी चीज़ों से इंसान बोर हो जाता है। तो जहाँ बात होती है हमारी मीट लवर्स की, तो वहीं वेज लवर्स की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं आप सभी से शेयर करती हूँ, जल्दी से इन इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लें ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो जाए और आप इसको इसी तरह से बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में बना सकें। जी तो लिसनर्स, इस शाही दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दाल माश एक कप। कम से कम आपने इसे अच्छे से धोकर भिगो के रख देना है 2 से 3 घंटों के लिए। इससे क्या होता है कि दाल जब हम कुक करते हैं तो वो अच्छे से जल्दी पक जाती है, जल्दी गल जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो आपने इस दाल को अच्छे से भिगो के रख देना है। साथ ही साथ हमें अगला इन्ग्रीडियंट चाहिए, जो कि है प्याज एक बारीक कटा हुआ, टमाटोज 1 से 2 अदद बिल्कुल बारीक कटे हुए, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब बात करते हैं स्पाइसेस की, यानी कि मसाला जात की। सो इस रेसिपी में शामिल होगा लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून, सीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। सो ये स्पाइसेस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस रेसिपी में हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नमक तो फिर हसबे ज़रूरत हसबे ज़ायका हम शामिल कर देंगे।

अब बात करते हैं हमारे आखिरी इंग्रेडिएंट की, यानी कि गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया बिल्कुल बारीक लंबा कटा हुआ, और कुकिंग ऑयल या फिर बासमती की, इट्स टोटली योर चॉइस। आप इन दोनों में से जिसमें भी चाहें इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो जी लिसनर्स, ये तो थे हमारे इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए। अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का। तो जी लिसनर्स, हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर की रिक्वेस्ट है, सो हम उनकी रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेंगे और इस खूबसूरत से ट्रैक को शो में शामिल करेंगे। जी तो लिसनर्स, आइए आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। वैसे भी आप सभी कह रहे थे कि जो पिछला ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा सैड, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, तो अब बारी आती है थोड़ा सा हलचल वाला और थोड़ा सा चटपटा सॉन्ग सुनने का। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये साउंड ट्रैक।

0: हमेशा गंदे सॉन्ग
1: यार। पागल है
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
0: बट व्हाई इट्स आइकॉनिक?
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई।
3: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
2: यू गाइस वांट ऑडिशन? या
1: ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes! We killed it!
1: आगे ले गया? ट्रोल हो जाएंगे?
2: Yeah.
1: Not at all.
0: Dino.

जी तो लिसनर्स, माहौल को तो हमने अब थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़ा सा चटपटा बना दिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं अपनी चटपटी सी रेसिपी की जानिब। सो जी लिसनर्स, अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी ऑथेंटिक दाल। सो सबसे पहले हमने भिगोई हुई दाल को नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छे से उबाल लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि दाल को हमने सिर्फ और सिर्फ 90% तक कुक करना है, क्योंकि हमने जब बाद में इसे पकाना है तो बाकी का तो 10% होगा वो हमारा कवर अप हो जाएगा। तो अगर हम पहले ही इसे ओवर कुक कर लेंगे सो इसका ये नतीजा निकलेगा कि जो हमारी दाल है वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। सो 90% तक इसको अच्छी तरह से पका लें और फिर पानी निकाल कर अलग रख लें। अब नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है एक पैन लेने की। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है, उसमें कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है, ठीक है। गर्म करने के बाद हम इस पर शामिल करेंगे जीरा और प्याज। अच्छा, जब आपका प्याज हल्का सा गुलाबी होने लगे या थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इस पर शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। अब आ जाती है हमारी दाल में, यानी कि इस रेसिपी में शामिल करने की, ऐड करने की स्पाइसेस को, क्योंकि स्पाइसेस के बिना हर खाना अधूरा है और हर खाने को अच्छा डिलीशियस बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि स्पाइसेस की एक बैलेंस क्वांटिटी को शामिल किया जाए। सो हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक। सो इन तमाम तरह इन्ग्रीडियंट्स को शामिल करके और साथ ही साथ हम इसमें और भी थोड़ा सा एक स्पेशल मसाला ऐड करेंगे, जिसे मैं तो गरम मसाला कहती हूँ लेकिन आप सभी से क्या कहते हो आप देख लो। सो इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर बिल्कुल नरम ना हो जाएं। अब बारी आती है इसी मसाले के अंदर शामिल करने की हमारी दाल, जिसे हमने अच्छे से उबाल कर साइड पर रख दिया था। अब हम उस दाल को शामिल कर देंगे इसके अंदर, 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ऊपर से कसूरी मेथी, गरम मसाला, इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को छिड़क देंगे। सो जी अब तकरीबन हमारी रेसिपी अपने एंडिंग मराहिल की जानिब बढ़ रही है, यानी कि अ फ्यू स्टेप्स और उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी शाही दाल हो जाएगी तैयार। सो अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और साथ ही साथ इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और 5 मिनट के बाद हमारी मज़ेदार सी खूबसूरत सी दाल हो जाएगी तैयार। अब हम करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। अब गार्निशिंग के लिए जो हरा धनिया, अदरक लहसुन हमने और ग्रीन मिर्च हमने कट करके साइड पर रखी थी, हम उन तमाम तर चीज़ों को ऊपर से छिड़क देंगे, जिससे क्या होगा रेसिपी हमारी दिखने में खूबसूरत दिखेगी, डिलीशियस दिखेगी और प्रेजेंटेबल दिखेगी। क्योंकि कहा जाता है कि खाना हमेशा हमारी आंखों से गुजरता है एंड देन हमारे पेट में जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि खाना दिखने में खूबसूरत दिखे और टेम्पटिंग दिखे। सो इस खाने को डिलीशियस और टेम्पटिंग बनाने के लिए हमने इन इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ किया था। तो जी लिसनर्स, इसी के साथ साथ ये रेसिपी भी अपने इख्तिताम को पहुंची, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है, जिस रेसिपी को हमने डेडिकेट किया था अपने तमाम तर वेज लवर्स को। तो अब आ रही आती है जहां हमने इतनी मज़ेदार चटपटी चीज़ों की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कुछ मीठे के बारे में। सो जी लिसनर्स, आज हम बनाएंगे इसके साथ मज़ेदार सा मिंट मार्गरीटा, क्योंकि जब हम बहुत सा चटपटा खाना खाते हैं सो हमें ज़रूरत होती है उसे डाइजेस्ट करने की, और डाइजेस्ट करने के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक इस गर्मी के मौसम में मिल जाए तो मूड और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जी लिसनर्स, इस मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग से मिंट मार्गरीटा को बनाने के लिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आपको चाहिए हरा धनिया, जिसे आप फ्यू लीव्स यूज़ कर सकते हैं, आप इन कुछ पत्ते इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसमें आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, आप अंदाजे से थोड़ा सा ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है 7 अप या फिर स्प्राइट,
جو بھی آپ کو پسند ہو ایزیلی اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ریفریشنگ ڈرنکس میں 7 اپ اسپرائٹ تو ٹاپ نمبر 1 ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے لیمن جس کے 2 سلائسز کٹ کیے ہوئے اور تھوڑے سے پودینہ. ٹھیک ہے, سو یہ تو ہمارے بیسکس انگریڈینٹس ہیں من مارگریٹا کو بنانے کے لیے. اب سمپلی بنانا کس طرح سے وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں, جسٹ ا لٹل فیو اسٹیپس اور آپ اس ریفریشنگ ڈرنک کو بآسانی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں.

तो ये लेसन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लेंडर में आपने डाल देने हैं 2 अदद लेमन स्लाइसेस, साथ ही साथ अपने मिंट लीव्स और पुदीने के पत्ते, ठीक है। इन सभी को शामिल करने के बाद आपने 2 लेमन के स्लाइसेस को ऊपर से स्क्वीज कर लेना है और आपने इसमें शामिल करनी है ढेर सारी बर्फ। बर्फ को शामिल करने के बाद लास्टली आपने शामिल करनी है 7 अप या फिर स्प्राइट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आसानी घर में आप उसको इसमें शामिल कर दें।

सुबह सब आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और आपकी मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग मिंट मार्गरिटा हो गई तैयार, जिसे सिंपली आपने जस्ट फ्यू स्टेप्स को फॉलो करके बनाया। सो डियर लिसनर्स, ये थे हमारी आज की द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी डिलिशियस सी रेसिपीज, जिसमें सबसे पहले वाइट चिकन कढ़ाई, जिसे आप खूबसूरत नान के साथ, रोटी के साथ नोश फरमा सकते हैं। और इसके टेस्ट अरोमा की अगर आप बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनेगी अगर आप इसको सिंपली कम मसालों में बनाएंगे, क्योंकि बाज़ू का लोग क्या करते हैं, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं या फिर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी रेसिपी की ऑथेंटिसिटी है वो ज़रा कम हो जाती है। सो कोशिश किया करें कि कम मसालों में अपनी रेसिपीज़ को बनाएं। इससे ये होता है कि हमारी रेसिपीज़ डिलिशियस बनती हैं, मज़ेदार होती हैं और उनका जो ऑथेंटिक टेस्ट है, अरोमा है, वो बरकरार रहता है। सो जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी, जिसपे हमने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई, शाही दाल बनाई और फिर इन दोनों मज़ेदार सी चटपटी रेसिपीज को डाइजेस्ट करने के लिए रिफ्रेशिंग सम मिंट मार्गरिटा। आई होप सो आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। सी दो लिसनर्स, अगर आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी या इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप सिंपली 01157100971 जो कि है हमारे स्टूडियो का नंबर, यानी कि मेरा और आपका रबते का नंबर, सो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे सिंपली टेक्स्ट करके बता सकते हैं आपको किस हवाले से क्या क्यूरी है, आपकी क्यूरीज को ज़रूर दूर किया जाएगा।

सो इसके साथ साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपीज अच्छे लगी होंगी. अपना फीडबैक लास्ट में मुझसे शेयर करिएगा. 01157100971 है हमारा नंबर. सो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको आज की रेसिपीज कैसे लगी, और मजीद ऐसी रेसिपीज को जानने के लिए, सीखने के लिए इसी तरह से शो को ट्यून करते रहिए. एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ, radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, इसी तरह से हमें सुन सकते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं. डियर लिसनर्स, इसी के साथ साथ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

वन एफएम के नाम से। जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। ड्राइव करते हुए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं, या फिर पीछे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं ना, तो उनके लिए कोई ट्रैक अगर उनकी फरमाइश का कोई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। और जो लोग ऑफिस की तरफ निकल आए हैं वो भूल गई बात, एक तो भुलक्कड़ सी होती जा रही हूँ ना। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो लोग ऑफिस की तरफ निकले हैं सो बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुजरा है। ऑफिस में अगर बॉस की डांट पड़ चुकी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मूड को जो है वो स्वस्थ करने के लिए ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जो है वहाँ पर जाकर आप रेडियो 97.1 एफएम को ट्यून कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथी सिर्फ और सिर्फ 97.1 एफएम ही है। मुझे हमेशा के लिए प्रोग्राम में जो है ना मैं टॉपिक शामिल करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं स्पेशली इंतज़ार करूँगी आप सबका कि आप प्रोग्राम में जो है वो शामिल होइएगा और टॉपिक शामिल करिएगा। बट उसी से पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक छोटे से खूबसूरत से प्यार से ट्रैक के साथ। अच्छा, ये ट्रैक मैंने मेरे ख्याल में अभी मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और मैंने अचानक से एक रील पे जो है ना इसको सुना, तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम का जो पहला ट्रैक होगा ना वो यही शामिल होगा। भाई अब तो यही शामिल होगा। वो कहते हैं ना कि सलूरा जो बात अपने दिमाग में बिठा लेना फिर वो करके ही रहती है। सो वीर ज़रा मूवी से लिया गया ये ट्रैक, सुनते हैं आइए इस ट्रैक को। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून फजल 97.1 एफएम एंड डैप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स साउंड, आवाज आप सुन रहे हैं सुलराज की सवाल। आके मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसके ना जिसमें ना सिर्फ खाना होगा बल्कि बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे एहसास, जज्बात छुपे होंगे जो आपने मुझे बताने होंगे। बल प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक उस पर रही आपसे मुलाकात। सो आज का मुझे कोई ऐसा टॉपिक मिल नहीं रहा जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, बट मैं अभी कोशिश में हूँ कि मुझे कोई परफेक्ट सा टॉपिक मिल जाए और मैं उसको आपके अपने दरमियान शामिल करूँ।

लेकिन अगर कि कोई टॉपिक किसी भी तरह का टॉपिक आप मुझे शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 01157100971।

खैर उसी के साथ साथ टॉपिक तो शामिल कर ही देंगे, बट प्रोग्राम में जो है बड़ी खूबसूरत सी बात शामिल करवाई गई है, और बात कुछ इस तरह से है, हमें नाम मुझे पर्सनल रखने को कहा गया, सो मैं नाम नहीं दूंगी, बट प्रोग्राम में जो है बात शामिल करवा देते हैं। आज की बात है बड़ी प्यारी सी के आई डोंट नो कि इन्होंने किसके हवाले से किस तरह से बोली है, लेकिन किसके लिए कही है। मेरी बात कुछ इस तरह से कि रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ लोग खामोशी से अपने हो जाते हैं। अब आई डोंट नो कि उन्होंने किस हवाले से बात की है, मुझे नहीं आइडिया। अगर अगर तो अगर किसी को आपने वो जलाने वाले काम किए ना, बट ये नहीं करने हैं भाई, लड़ाई लड़ाई माफ़ करनी है, लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी। बचपन में कहा जाता था कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। मतलब यार मतलब छोटे छोटे जब हम जब छोटे छोटे थे तो कितनी मतलब अच्छी अच्छी ऐसी थी, छोटी सी नाराज़गी होनी और फ़ौरन से क्लियर हो जानी। बट अभी जो नाराज़गियाँ हो जाती हैं वो सालों सालों तक जो है वो नाराज़ ही रहते हैं, और मतलब कोई इंसान ये कोशिश ही नहीं करता कि यार हम एक दूसरे को राज़ी कर सकें। यहाँ पे जो है वो मौक़ों का इंतज़ार किया जाता है कि अगला इंसान पहले मुझे बुलाएगा तभी मैं बोलूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो है और ईद वगैरह इस तरह के इवेंट जो है ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपने प्यारों को राज़ी करें, अपने प्यारों को बनाएं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा अपना पर्सनली ये कहना है कि भाई अगर किसी को अपना अपने अपनों को जो है वो राज़ी करना है तो इसमें किसी मौके की किसी इवेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका दिल जो है वो मुतमईन होना चाहिए, आपका दिल आपका साथ देना चाहिए, आपका दिल आपके साथ होना चाहिए, और अगले इंसान जो है वो खुद बहुत राज़ी हो जाएगा। वही बात है ना कि किसी को प्यार से बुलाने में जो है ना बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप दो प्यार के अल्फाज जो अगले के साथ बोल देते हैं तो इंसान खुद बहुत चल कर आपकी तरफ मायल हो जाता है, खुद बहुत आपकी तरफ चल कर आता है। सो यही कोशिश करें कि दूसरों को खुश करने से बेहतर है पहले आप अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली वालों को खुश करें, क्योंकि जब हम लोग अपने से जुड़े रिश्तों को खुश नहीं रख सकते, खुश नहीं रख पाते, तो हम किसी दूसरे को क्या खुश रखेंगे यार। ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और मेरी मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद जो है ना एक औरत की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, वाकई बदल जाती है। फिर उसके बाद मर्द की भी मेरे ख्याल में यही बात है, उसके बाद उसको घर में खाने पीने का और दूसरों का ख्याल रखने का और फिर इसी के साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करने का, भाई किसी कोई नाराज़ ना हो जाए, कि वो ये आपके लफ्ज़ों से नाराज़ ना हो जाए, उस चीज़ का भी ख्याल रखने का। सो बहुत सी जिम्मेदारियाँ जो है इंसान पर पड़ जाती हैं। कोशिश यही करें कि अपनों को राज़ी करें, क्योंकि जब अपने प्यार नहीं करते, गैर प्यार करते हैं ना, तो बहुत तबाहियाँ होती हैं। सो छोटी सी बात ही प्रोग्राम में शामिल की, सो मैंने भी उसके हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ी सी तो पहुँचा ही दिया, मतलब मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हो गया आप सबके लिए। पर मुझे जो है ना अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है, लंच बॉक्स को प्लीज़ ओपन कीजिएगा। आपको भी अगर भूख लगी है तो ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेने के बाद किसी पार्क में चले जाएँ, पार्क में जाकर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, और वहाँ पर जाकर जो है आप अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे भी बता दीजिए अगर आप चले गए हैं तो या जाने वाले हैं, तो मैं भी अपने लिए कुछ मंगवा लूँ, क्योंकि मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई भूख से। एक तो छोटी सी जान है सलूर आज के, और ऊपर से भूख, वही बात है ना आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना वो नाश्ते वगैरह नहीं करते। अच्छा नाश्ता किसका दिल नहीं, मतलब खाने का दिल यार किसका नहीं करता। मुझे अक्सर मेरे घर वालों से बहस हो जाती है, किसी से भी कोई बहस हो जाती है कि यार नाश्ता खाना क्यों नहीं खाते। सो मैं यही कहती हूँ कि यार दिल नहीं करता तो नहीं खाती है, मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी ना करना है। और फिर वो लोग कहते हैं कि यार डाइट करियो, ये करियो, वो करियो, नहीं यार डाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता, सब जो है ना वो अपने दिल के मुताबिक चलते हैं। मैं जब शुरू में एक जगह गई, जब मैंने पहली दफ़ा घर से बर पाँव रखा, तो मैंने बर की दुनिया को देखा, जाना पहचाना। मुझसे पूछा गया था कि आपको बर की दुनिया कैसी लगी। सो दुनिया अच्छी है, बस अपने काम से काम रखें, बस झूठ जो है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देते हैं। खैर बता रही थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार दुनिया में पाँव रखा था, घर से बर पाँव रखा था, और मुझे पता चला था कि घर से बाहर भी एक दुनिया है। सो फिर उसके बाद मैं एक ऑफिस में गई, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि यार आप मतलब उस टाइम पे सलूरा जो है ना वो थोड़ी स्मार्ट सी थी। सो मुझे पूछा गया कि आप इतनी मतलब फिटनेस आपकी है, आप खा मतलब डाइट वगैरह करती हैं ये वो। सो मैंने ये बोला कि डाइट वगैरह वाला तो कोई मतलब चांस ही नहीं है मेरे पास, तो क्योंकि मैं तो लोग तीन टाइम का खाना खाते हैं, मेरे ख्याल से 4-5 टाइम का खाना खा जाती हूँ। सो मैंने एक जवाब दिया था कि मैं किसी की खुशियाँ नहीं खाती, इस वजह से मैं इस तरह की हूँ।
सो वो उस मेरी बात को उन्होंने इतना उठाया और अब वो टाइम है और ये टाइम है कि भाई मेरा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। नज़र जो है ना वो बहुत बहुत बहुत गंदी होती है। कोशिश करें कि अपनी चीज़ें अपने तक रखें, ना कि दूसरों के साथ शेयर करें। खैर और इसी के साथ साथ जो है प्रोग्राम में गपशप आपके साथ जारी रहेगी, अपनी आवाज़ भी आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में छोटी सी फरमाइश को पूरा करने का। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा, मुझे भी ये ट्रैक बहुत पसंद है। मैंने भी सुना था आई थिंक सो के मेरे कोलीग है यहाँ पे, उन्होंने मुझे ये ट्रैक सुनाया था और मैंने इस ट्रैक को जब पहली बार सुना तो मुझे इसका शुरू में जो बीट है ना वही बहुत मज़े की लगी थी। सो शामिल कर चुके हैं दिल कमला ट्रैक आपके अपने दरमियान। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच ब्रेक जो आज से सुन रहे हैं। आज की सवाल प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। छोटी सी फरमाइश थी तो मैंने सोचा कि उसको पूरा करे जाते हैं। सो उसी के साथ साथ बात कर रहे थे हम लोग प्रोग्राम में टॉपिक शामिल किए थे, तो मेरे ख्याल से आज के दिन जो हम सेगमेंट हमारा रख लेते हैं वो कुछ इस तरह से रखते हैं कि प्रोग्राम में जो है इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें शामिल करवाते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है वो मुझे उस तरह से मिल नहीं रहा। सो कोई ना कोई चीज़ तो हम निकाल कर सामने रखनी ही है। सो इसी तरह जो आज के दिन के हवाले से कोई अच्छी बात हम तक पहुँचाना चाहें, सो आप वो पहुँचाइएगा, ज़रूर पहुँचाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अभी अचानक से मेरे सामने को एक मैसेज आया तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको आप तक पहुंचा दिया जाए कि लोग जो पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।

खैर बात को स्टार्ट करेंगे आकर। बात हमने प्रोग्राम में शामिल किया है कि लोग जब जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो आपका हिसाब लगाना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। सो पैसों से मेरे ख्याल में इज्जत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इंसान के अहलाक, इंसान के बारे में आपको पता नहीं है कि यार वो कैसा है कैसा नहीं। से कम एक इंसान को पैसों की नज़र से ना देखा जाए। खैर प्रोग्राम में शामिल करते हैं इस ट्रैक के पास रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं आप सबको रेडियो फजा के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। सोलो जी के साथ साथ जो है वो ट्रैक शामिल किया था, बड़े खूबसूरत सा, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। फरमाइश आई थी इस ट्रैक की, तो मैंने सोचा कि मैंने इसको शामिल कर दिया। जैसे सुबह बात कर रहे थे प्रोग्राम में बात शामिल करने की, मेरे पास ये मैसेजेस आए थे। अभी मेरे सामने एक छोटी सी बात आई थी और मुझे उस बात की समझ नहीं आई। लास्ट टाइम भी आई थिंक सो कि मैंने प्रोग्राम में इसको शामिल करवाया था और मैंने पूछा भी था कि अगर किसी को इसका मतलब पता हो तो मुझे लाजमी बताइएगा।
1: तू रहंदा क्यों कुछ नहीं कहंदा, सुखदा सा मेरा तेरी आसा।
2: उतनी जफर के करीब हो रही थी मेरी जिंदगी में आया।
0: खैर बात थी, मैंने सोचा कि बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो बात कर रहे थे कि अकल छोटी हो जाए तो जबान लंबी हो जाती है।
3: जगह की पहचान उसके लोहारों से, अंग्रेज या पे।
0: सो मुझे इस बात का उस तरह से मतलब समझ में नहीं आया, बट आपको अगर समझ आया तो मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी अकल छोटी हो जाती है ना तो आपकी जबान लंबी हो जाती है, यानी कि आप बढ़ चढ़ के जो है ना बातें समझाना शुरू कर देते हैं, और उसको मेरे ख्याल से अकल नहीं होती उस इंसान को।

आज के दौर में कमी जो है ना लोगों को अक्ल होती है, सो इज्जत इज्जत रास नहीं होती लोगों को, सो इस चीज़ का जो है ना हमें खुद ख्याल रखना चाहिए, ना कि कोई दूसरा इंसान इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। अगर हम कहीं बढ़ चढ़ कर ज़्यादा बोलेंगे ना तो हमारी इज्जत का ही मसला बनेगा, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि ज़्यादा बोलने वाला इंसान जो है ना वो अपनी तरफ से बड़ा बन चढ़ के खुद को बना रहा बता रहा होता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। आपकी इज्जतें ना उसमें खुद बहुत जो है वो आप उतार चढ़ाव ले आते हैं।

मैंने खुद अपनी ज़िंदगी का एक एक ही रखा हुआ है कि एक ही जो है वो चीज़ है कि यार किसी भी जगह पे आप हैं आपको वहाँ पर चुप करके सुन लेनी चाहिए, ना कि आपको पलट के जवाब पे जवाब देना चाहिए। आजकल की जो बात हमारी हो गई है ना, हम लोग इंसान की बात तब तक सुनते हैं जब तक वो बोल रहा है, और जैसे ही वो चुप होगा तो हम पलट कर उसका जवाब देंगे, ना कि हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस दुनिया में समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सो अगर कोई इंसान आपको समझाता है तो उसको संभाल के रखें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर वो आपको समझा रहा है तो आप उसकी बात को तब तक सुन रहे हैं कि जब तक वो बोल रहा है, तो ये चीज़ गलत है। आप उस इंसान की बात को सुने, समझें और फिर सोच समझ के जवाब दें। सोच समझ के जवाब देने वाला इंसान जो है ना, वो अकलमंद होता है। लेकिन मैंने कहीं ये चीज़ देखी है कि जो इंसान आपको फ़ौरन से जवाब दे देता है ना, उसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। जो इंसान सोच समझ के जवाब देता है, उसको कहा जाता है कि नहीं, आप इस मामले में फेल हैं। सो मेरे ख्याल में कि जो इंसान सोच समझ के जवाब देता है ना, वो इंसान जो है वो इंटेलिजेंट होता है। वो इंसान जो है ज़िंदगी को अच्छे से जानता है। ना कि वो इंसान जो फ़ौरन से छट करके अगले बंदे को जवाब देता है। मेरे ख्याल में ये उस इंसान से बेहतर इंसान है जो सोच समझ के जवाब देता है। और सोच समझ कर ही जवाब देना चाहिए, किसी भी तरह की बात हो सोच समझ के जो है ना कदम उठाना, सोच समझ के अगले के साथ ट्रीट करना, ये इंसान के अंदर चीज़ होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन यार उसी के साथ साथ बात को कंटिन्यू करेंगे वापसी आकर, वापसी पे आकर प्रोग्राम में हाल होने लगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। सो कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। अभी तक के लिए स्टे ट्यून फजा 97.1 FM एंड डैप प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा ठीक को ठीक 2 बजे तक। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़ाना है फजा के साथ और हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के उस बाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाते को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से. वेलकम करते हैं एक बार फिर से. बताइएगा क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ ब्रेक से वापस तो हम आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो है बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि साथ साथ आप मेरी आवाज़ भी सुनते रहें और बैकग्राउंड बीजीएम जो है ना उसको म्यूजिक में तब्दील कर दिया जाए. सो आपको पता है कि बड़ी ही तो बहुत मज़े की बात प्रोग्राम में शामिल हो गई है, और मुझे लगता है कि इस पर अब मुझे लंबा टॉपिक लेके निकलना पड़ेगा. मतलब मुझे ये चीज़ जो है ना थोड़ी ये बात इंटरेस्टिंग लगी है. ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी के इसलिए दिखा जाती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है. सो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही बात है, और ज़िंदगी की ठोकर जो है ना वो ठोकर नहीं है, वो एक सबक है जो हमें आगे आने वाली ज़िंदगी में जो है ना हमारे लिए वो बेहतरीन बनता है. क्योंकि जो हमें पता होता है कि हमने पिछली चीज़ों को जो चीज़ें हमने की थी उन वो ही गलतियाँ हमने दोबारा आने वाली ज़िंदगी में नहीं करनी. सो वो एक सबक होता है, वो ठोकर नहीं होती. लेकिन एक ही चीज़ से ठोकर खाने वाले इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है, एक ही चीज़ से धोखा खाने वाले इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है. अब वो मेंशन नहीं करती किसी एक इंसान को, या मैं पॉइंट नहीं करती किसी को, बट पता ही होता है इंसान को कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. वो कहते हैं कि जब हम किसी भी कोई गलत काम करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो हमें हमें पता चल रहा होता है कि यार हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को जो है ना वो रोकते नहीं हैं, हम उस चीज़ की तरफ और भागे जाते हैं.

प्रेम नगर। सो भी आप सोच रहे हैं कि सर्वराज बोलते बोलते कहाँ निकल गए, कहाँ चली गए? तो मैं कहीं नहीं गई, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकाल रही कि जिंदगी की ठोकर के बारे में इंसान को क्या डिस्कस करें। जिंदगी इंसान को मोटिव

शख्सियत आ जाती है। हर दिन अपने आप को बदलें, हर दिन अपने आप में चेंजिंग लेके आएं, हर दिन को जो है बेहतर से कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिंदगी की ठोकर जो है ना गर्चा एक तो लगती है उस टाइम पे जब अपने साथ नहीं होते, और फिर जब कोई साथ होता है तो वो भी साथ खड़ा नहीं हो पाता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ तो उसने आपको धोखा दिया। नो, ऐसा नहीं हो सकता यार कि आप तो उसकी कोई मजबूरी हो। लेकिन हमारी जो चीज़ नोट की जाती है, नहीं की जाती है कि जो मुश्किल में साथ नहीं है उसको ख़त्म, पीछे बाय बाय। वैसे नहीं करें, किसी की वजह से किसी के साथ अपना ताल्लुकात ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल को वो इंसान उस इंसान के साथ ठीक हो जाए और आपका रिलेशन जो है वो ख़राब हो चुका हो। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली होती है, क्योंकि इंसान को वो सबक सिखाती है जो किताबें भी हमेशा नहीं सिखा पाती। इंसान को हर मुश्किल का सामना और हौसला और उम्मीद के साथ जो है ना आगे बढ़ने की ये हिम्मत देता है।

0: ज़िंदगी में ऐसे छोटी छोटी परेशानियाँ जो है ना वो आती रहती हैं, उसको इग्नोर करें, क्योंकि जब आप टेंशन को इग्नोर करेंगे ना तो वो बोलेंगे कि यार ये तो मुझे इग्नोर करिए, इसको तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो खुद ब खुद दूर भाग जाएगी। लेकिन हम जैसे लोग जो है ना, वो हम ये कहते हैं कि यार लगता है कि हम परेशानियों के पास खुद भाग कर जाते हैं, पर टेंशन हमारे पास नहीं आती, हम टेंशनों के पास भाग भाग के जाते हैं। खैर, और उसी के साथ साथ प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मीडिया और आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिल्क एंटरटेनमेंट। प्रोग्राम में शामिल होइएगा, होने का एहसास भी दिलाइएगा। जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़े ही आसान है, 01157100971 इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन आज के दिन के हवाले से कोई अच्छी बात हम तक पहुँचाना चाहें तो आप वो पहुँचा सकते हैं, या फिर ये पता करवाना चाहें कि आप हमारे प्रोग्राम जो है किस किस टाइम पर होते हैं, कौन सा आरजे कौन किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो जाके चेक कर सकते हैं, radiofuzaa.co.au की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपका जिंदगी को लेके क्या तजर्बा है। तो हर इंसान का जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है कि यार कोई फैमिली वालों से तंग गया, कोई दोस्तों से तंग गया, मतलब बहुत से मसले मसाले आते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी में आपका क्या मतलब बक्स क्या आपको है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। हम उसी चीज़ की तमन्ना करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन जो पास होती है उसकी हम कदर भी नहीं करते। सो उस चीज़ की कदर करें, उस चीज़ पर शुक्र करें जो आपके पास है, ना कि उस चीज़ पर उदास हों, उस चीज़ पर जो है शिकवे करें जो आपके नसीब में ही नहीं है। कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह की ज़ात आपका दिल उसी इंसान के साथ लगाए, उसी चीज़ में लगाए, उसी चीज़ में लगाए, मतलब जो आपके नसीब में हो, उस चीज़ के साथ बिल्कुल भी मत लगाए जो आपके नसीब में नहीं है। अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है। हम तो किसी को दुआ भी नहीं देने से रहे, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम क्यों यार, हम ही क्यों दें, मतलब दुआ देने से भी हम लोग गए गुजरे हैं। सो किसी को दुआ नहीं देनी, ये सोच के देने कि आप जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले वो आपके हक में कबूल होती है। सो इसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रहेगी, गला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मेरा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके साथ बोलती भी जाऊँ और आपको अपनी आवाज़ भी सुनाती जाऊँ, लेकिन ट्रैक भी ब्लैक है। बट अभी जो है ना वो प्रोग्राम में एक बैकग्राउंड BGM शामिल किया था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी साथ साथ सुन लिया जो साथ साथ आपको अपनी आवाज़ भी सुना दी जाए। बेहद शुक्रिया आप तमाम समाचारों का जिन्होंने आज रबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है। अभी जिन्होंने किया ना, मैं उनको वेलकम कर रही हूँ।
1: जब तुझे चांद देखे जमीन पर आन उतरे परी हो जैसे पानी।
0: आपका मूड एकदम स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ट्रैक शामिल करने पड़ते हैं, और मैं यही कोशिश रहती है कि मैं बैकग्राउंड

जो है ना उसको ट्रैक में तब्दील कर दूँ, ताकि आप ना निराश हो, आप ट्रैक को भी इंजॉय करते रहें और साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहें, मेरी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचती रहें। यकीन करें जिसने भी मेरे प्रोग्राम में किसी भी चीज़ पर किसी भी बात पर जो है वो अमल कर लिया, तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है ना वो पूरा हो चुका। आप मुझे ट्रैक से याद है, सिर्फ कहने नाल नाल नहीं रही दा, नाल रहना भी पैंदा वै। जी हाँ, तो बिल्कुल मैं हाँ, मैंने भी आपके साथ साथ रहना, ठीक हो, ठीक 2 बजे तक, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि टाइम से चलती है, टाइम जो है इतनी जल्दी गुजरा। तो वो कहते हैं ना कि जब मुझे मज़ा आने लगता है ना आपके साथ गपशप लगाने का, तो टाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। वही बात, वही चीज़ आ गई कि जब आप किसी चीज़ को खाना शुरू करते हैं और जब आपको खाने में मज़ा आने लग जाता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और मज़े जब मज़ा आने लग जाता है ना तभी ख़त्म होती है। मतलब मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोट किया है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो नोट करते रहा करें, ज़िंदगी के हिस्से होते हैं, कल को यादगार बन जाते हैं। किसी जगह पे आप बैठे हैं, किसी जगह पे आप फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, दोस्तों किसी भी चीज़ के साथ हैं, या फिर नॉन पर्सन्स के साथ हैं, तो आप उनके साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप तक पहुँचाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं, मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। रंग जैसे जुदा एक दूजे से होंगे हम। अभी मेरे पास ना एक छोटी सी फरमाइश भी थी, तो मैंने सोचा कि उसको शामिल करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले वही बात आ गई ना कि मुझे उसको ढूंढना पड़ता है, ढूंढने में जो मुझे टाइम लगता है ना वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे कहा गया था कि आपकी कितनी स्पीड है बोलने की, अब आप बहुत तेज़ बोलती हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे आपके अलावा कोई सुनता भी नहीं है, मेरी बक बक और कोई सुन भी नहीं सकता, मुझे इतनी टाइम तक कोई बर्दाश्त कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वाकई में बहुत बोलती हूँ। लेकिन मैं, मेरी एक चीज़ ये भी है कि मैं उन्हीं के साथ इस तरह बोलती हूँ जिनके साथ मेरी फ्रेंकनेस ज़्यादा होती है, या जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी होती है, और मुझे लगता है कि यार ये इंसान मुझे सुन रहा है और मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ मुझे सुन रहा है। लेकिन उन लोगों के साथ मैं बिल्कुल नहीं बोला। अब मुझे बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जो उन्हें फर्स्ट टाइम देखे तो बोलते हैं कि मतलब मगरूरी सी है, चुप करके बैठी रहती है, किसी के साथ बोलती नहीं है। सो मैं जब तक किसी के साथ फ्रेंक ना हो जाऊँ तब तक मेरी उस तरह से अगले साथ बातचीत शुरू होती ही नहीं है।

0: खैर अब उसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग ट्रैक की फरमाइश है, तो इस ट्रैक को शामिल करते हैं। इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात, सो डोंट गो एनीवे, रहिएगा मेरे साथ साथ।
1: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाचारों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलूर आज की। अभी मैंने एक चीज़ नोट किया, कुछ लोग मुझे सुनते साथ ही भाग जाते हैं। मतलब क्या यार, हम मुझे सुन सकते हैं, मैं इतना बुरा नहीं बोलती, इतनी प्यारी मेरी आवाज़ है, सॉफ्ट सी। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में फरमाइश को शामिल किया था और उसी के साथ साथ एक और छोटी सी फरमाइश है, उसको भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको निराश न किया जाए, आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। अच्छा, कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद जो है ना, आपको वो गुजरे हुआ पल याद आ जाता है जिसको आप याद नहीं करना चाहते, और आपका दिमाग भी बहुत, मतलब इंसान का दिमाग है ही ऐसा कि पकड़ पकड़ के ऐसे ख्याल आता है, ऐसी पुरानी सोचों को लेके आता है जो इंसान, जिनके बारे में इंसान सोचना भी नहीं चाहता। खैर कोई बात नहीं, हम उन सोचों से लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। जब हम अपने आप से लड़ सकते हैं तो हम दुनिया वालों से भी लड़ सकते हैं, अपनी सोच से भी लड़ सकते हैं। यही कहूँ कि जो लोग दुनिया वालों से लड़ सकते हैं वो फिर जो है अपनी सोच से क्यों नहीं लड़ सकते।

खैर मुझे ना एक बड़ी प्यारी फरमाइश की गई, और ये ट्रैक मुझे मैंने सुना था कुछ दिन पहले, यहाँ पे सुना था आई थिंक, सो मैंने रेडियो पे ही प्ले किया था। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, रही कि आपकी से मुलाकात इस ट्रैक के इस पार। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड 97.1 FM एंड टैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवल, अभी जो है ना प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक खा लूँगी, कमर्शियल ब्रेक के बारे की आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवे, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सवाल उसी के साथ साथ छोटी सी मुझे बेकार होती मुझे बेकस पा रही आपसे मुलाकात। अभी जो है ना प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे सेगमेंट का, यानी कि म्यूजिक के सेगमेंट का। हमारा मैंने लास्ट सेगमेंट रखा होता है म्यूजिक के सेगमेंट का। सो आइए शामिल करते हैं इस खूबसूरत ट्रैक को और मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप। भूख से मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं, मुझे कुछ खाना भी चाहिए। सो आप इस ट्रैक को सुनिएगा, मैं आती हूँ जल्दी से, कुछ खा पी कर इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाप्त के प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। लेकिन इस टाइम हमारा सेगमेंट जो चल रहा है ना, वो है ट्रैक का। सो ट्रैक शामिल किए जाएंगे आप अपने दरमियान। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रैक्स पसंद भी आएंगे। मेरे पास जो है ना वो फरमाइशें जो हैं काफ़ी ज़्यादा आई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं कि ट्रैक कौन सा शामिल करूं। बट प्रोग्राम में जो है आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। अभी तक के लिए ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को, क्योंकि हम आपके साथ साथ हैं, क्योंकि आप हमारे साथ साथ हैं। तुम वाओ यार, क्या लाइन बना दी मैंने। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से लिया गया ये ट्रैक। तुम क्या मिले, सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: ಜಲ್ದಿ.
1: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक. एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से. प्रोग्राम आप सुने लंच बॉक्स लाउंज. आवाज़ आप सुने सलो राज की सलोसी के साथ साथ. अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने का. सो मुझे दीजिए इजाज़त कल तक के लिए. अपना अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दुआ में मुझे भी याद रखिएगा. कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान. अल्लाह हाफिज़.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

और सामिन इहतराम, मुहर्रम अल हराम के इस बाबरकत महीने में हमें अपने अमाल का जायज़ा भी लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजरी है, जो कल ख्वाब थे आज यादें बन चुके हैं, आजकल के लम्हात कल का माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तो आइए कुछ लम्हों के लिए बातों को यही रोकते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत नुसरत अली खान का कलाम, जो आपकी दोपहर को मजीद खुशगवार बना देगा। सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM, क्योंकि प्रोग्राम बाकी है। मिलते हैं इस नगमे के बाद और अगले सेगमेंट में, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

सही वक्त पर गलत जगह से निकल जाना बहुत बड़ी नेमत है। कुछ दरवाजे बंद करना हार नहीं होता, कुछ लोगों से दूर हो जाना बेवफाई नहीं होती। कभी कभी अपनी इज्जत, सुकून और दिल की हिफाजत के लिए खामोशी से पीछे हट जाना ही सबसे बहादुर फैसला होता है। बाज़ औक़ात खुद को बचा लेना ही असल जीत होती है।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: गलतियां गिनती गई।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: Get ready to move.
9: It's all about the beats. Wow,
10: FM. Only tune Super Hit Channel.
11: Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are saying. We are... Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: This is a public service announcement.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाहि मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
10: एप। यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

नसरा कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: आपके दिल की धड़कन,
16: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
7: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM रेडियो फजा।
8: रेडियो फजा,
9: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा 97.1 FM। एंजॉय सोलफुल सॉन्ग्स ऑफ रफी ओनली ऑन डेडिकेशन आवर

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.